0: याद है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के।
1: ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है, बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके।
2: मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशरफ, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।

0: कोई बात करो मुस्लिम।
1: मुझे मार दोगे या अमान दोगे?
0: क्यों पूछ रहे हो?
1: मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी।
2: हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस खानी करते हैं ये लोग, इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं।
1: हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तमास करते हैं।
2: तो फिर खुदा से इल्तमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे।
1: खुदा से तलब मग़फ़िरत करता हूँ।
2: मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम।
1: मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो।
2: बिस्मिल्लाह।
1: ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह।
3: मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो।
2: ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो, ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो।
3: अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा।
2: कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुना भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह।
3: वसीयत पर अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या, फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं।
2: अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फारा अदा कर देना।

0: वसीयत सुनाओ मुस्लिम।
1: मेरे चचेरा भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखलूस हूँ, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना।

0: जानते हो मुझसे क्या चाहता है?
1: वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर, राजदार रहो, अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज़ औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है।

0: क्यों पानी नहीं पिया?
1: मेरे मुंह का खून माने हो गया।
0: देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो चाहता है प्यासे मरो।
1: ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरा है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या?
0: अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है?
1: गुमान नहीं है, यकीन है।
0: सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं, अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सरी और मोहक्कम कौल है, फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं।
1: मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है, इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक साले मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है।
0: खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा।
1: हाँ, तुम वही हो कि वो बिदत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। ना मर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना, तुमसे कुछ भी बईद नहीं।
0: कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो?
2: मैं हूँ अमीर बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है।
0: बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो।
2: जी अमीर। चलो

0: जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके।
1: मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशरफ, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।

0: कोई बात करो मुस्लिम,
1: मुझे मार दोगे या अमान दोगे?
0: क्यों पूछ रहे हो?
1: मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी।
2: हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान, असीरी की हालत में भी रजस खानी करते हैं ये लोग, इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं।
1: हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तमास करते हैं।
2: तो फिर खुदा से इल्तमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे।
1: खुदा से तलब मगफिरत करता हूँ।
2: मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम।
1: मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो।
2: बिस्मिल्ला।
1: ए इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है, मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह।
3: मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो।
2: ए पिसरे साद, मुजायका मत करो, ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है।

0: 봐봐, 씨앗도 손도.
1: अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा।
0: कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुना भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह।
1: वसीयत पर अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या, फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं।
0: अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफारा अदा कर देना।

0: वसीयत सुनाओ मुस्लिम।
1: मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्न अली गुलितों के कूफा ना आए लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखलूस हूँ, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना।

0: जानते हो मुझसे क्या चाहता है?
1: वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो, अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी, कोई और ख्वाहिश है?
2: मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो।
1: बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरण नजस हो जाएगी।
3: जी अमीर।
4: मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदाए खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है।
2: जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सुए जन की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है।
1: इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए जन की वजह से।
2: खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते।
4: अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजात और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तेहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं।

0: क्यों पानी नहीं पिया?
1: मेरे मुंह का खून माने हो गया।
0: देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो चाहता है प्यासे मरो।
1: ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरार है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या?
0: अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत ने तुम लोगों

0: का कोई हक है?
1: गुमान नहीं है, यकीन है।
0: सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं, अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सरी और मोहक्कम कौल है,
2: फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा।
0: रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं।
1: मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है, इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक साले मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत तकवा और इल्म की गवाही दी है।
0: खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा।
1: हाँ, तुम वही हो कि वो बिदतें दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नाम मर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना,
2: तुमसे कुछ भी बई नहीं।
0: कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो?
3: मैं हूँ अमीर बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है।
0: बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो।
3: जी अमीर। चलो

70 सिपाही घोड़ों के साथ आते हैं। जैसे ही ये घोड़ों के चलने की आवाज़ गलियों के करीब आती है, मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि ये मेरे लिए आए हैं। मुस्लिम मेहमान ज़रूर थे, लेकिन उन्हें ख्याल था अपने मेज़बान का भी। अरतवा से कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि तेरे घर में कोई नुकसान हो और हमला यहाँ हो, लिहाजा दरवाज़े के बाहर आते हैं तलवार लिए हुए। 70 सिपाही आए थे, जो भी सामने आता था जनाब मुस्लिम बिन अकील शुजात और दिलावरी से मुकाबला करते थे। बहुत सों को फिनार किया, बहुत सों को ज़ख्मी किया, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन अशअस मलून जो है वो इब्न ज़ियाद के पास पैगाम भेजता है कि हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए। दोबारा 100 और आए, उस जिस पर इब्न ज़ियाद फिर पैगाम भेजता है अब्दुल्ला बिन अशअस को कि हमने सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए भेजा है, ये तुम बार बार सिपाही क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि तुझे अंदाज़ा नहीं है, ये बनु हाशिम का शेर है, ये कोई कूफा का बक्काल नहीं है जिसे गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। अदारा ने हुसैन फिर मुख्तलिफ घरों के छत पर ये चले जाते हैं, सिपाही और पत्थर से वार करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि जनाब मुस्लिम इतना ज़ख्मी हो जाते हैं, जब गिर जाते हैं तब इन लोगों ने आके हमला किया और इस तरह से हमला करते हैं कि जनाब मुस्लिम के लब भी जो है शहीद हो जाते हैं। मुस्लिम गिरफ़्तार हुए उस वक्त, और गिरफ़्तार करके इन्हें इब्न ज़ियाद के दरबार में ले लिया जाता है। अज़ादार हुसैन वहाँ जब लाया गया, वहाँ पर उमर इब्न साद भी बैठा था, और किसी सिपाही ने मुस्लिम बिन अकील से कहा कि सल्लिम अलल अमीर, अमीर को सलाम करो। लेकिन ये बात होती है कि जब इंसान का मुनीस और मददगार खुदा होता है, जब खुदा नजरों के सामने होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है। मुस्लिम कहते हैं अमीरी हुसैन, मेरा अमीर ये नहीं है, मेरा अमीर जो है हुसैन इब्न अली है। और उसके बाद उसने ऐलान किया इब्न ज़ियाद ने कि हम तुम्हें कत्ल का हुक्म सादिर करते हैं। उस वक्त जनाब मुस्लिम बिन अकील ने उमर साद की तरफ़ देखा और कहा कि तुम भी हमारी तरह कुरैशी हो, उसी रिश्ते के बुनियाद पर हम वसीयत करना चाहते हैं। पहली वसीयत यह है कि मेरे घोड़े और ज़रा और तलवार को बेचकर 700 दिरहम के हम मकरूज़ हैं कूफा में, उस कर्ज़े को अदा करना। दूसरी वसीयत यह है कि ये मुझे कत्ल करने के बाद ये दफन नहीं करेंगे, तुम कोशिश करना कि मेरे जिस्म को दफन कर दिया जाए। और तीसरी वसीयत बहुत अहम है हमारे लिए, और वो ये है कि तुम हुसैन को पैगाम भेज दो कि वो कूफे की तरफ ना आए। अज़दारान हुसैन मुस्लिम बिन अकील के दिल में ये जो तीसरी वसीयत थी, ये तकरीबन मरतबे के एतबार से वही है जो अब्बास जब मशकीज़े में पानी लेके आए थे और जब मशकीज़े में तीर लगा था, वही बात थी कि मुस्लिम कहते हैं मैंने ख़त लिखा था मौला को कि कूफे पे आ जाइए, लेकिन इन्होंने बेवफाई की है, हुसैन को ख़बर कर दे कि वो ये ना आए। दारार हुसैन दारुल अमारा के छत पर ले जाया जाता है। मुस्लिम बिन अकील ने 2 रकत नमाज की का वक्त चाहा, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद प्यास की शिद्दत थी, पानी मांगते हैं, कासा आता है पानी का, लेकिन जैसे ही लबों पर लगता है खून इतना जारी हो चुका था उस जख्म की वजह से कि वो उस पीने के काबिल न था। दोबारा 3 बार इस तरह से पानी आया। मुस्लिम से इतना सिर्फ यही कहेंगे, आप करबला के पहले शहीद हैं, आपके मौला को भी पानी नहीं मिलने वाला है, आपके लिए भी अब दुनिया से पानी जो है बंद हो चुका है। अज़दार हुसैन जल्लाद ने अपनी तलवार चलाई, मुस्लिम के सर को तन से जुदा किया और मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा के छत से जमीन पर फेंक दिया जाता है। इब्न ज़ियाद मलून के हुक्म के मुताबिक मुस्लिम के दोनों पैरों में रसन बांधी जाती

0: घोड़े के लगाम में रसन बांधी गई, हानि के लाश को भी इस तरह से कूफे की गलियों में फिराया गया। बस इतना जुमला हम कहेंगे, मुस्लिम तुम्हारे लाश की बेहुरमती हुई, लेकिन वहां भी करबला में हुसैन के लाशे को इस तरह से पामाल किया गया कि हड्डी की सीने की हड्डियां सीने की हड्डी तक जाते मिल जाती है। अज़ादारान हुसैन, ये सदमा हुसैन के लिए बहुत बड़ा था। जब खबर पहुंची है करबला पहुंचने से पहले, जब एक मंजिल पर ये खबर मिली हुसैन को, तो वह फौरन उस खैमे में जाते हैं जिसमें रुकैया और उनके बच्चे थे। उस बच्ची को बुलाते हैं, जो 3 या 4 साल की बेटी थी, जो उसने देखा कि मामू पुकारते हैं। हुसैन ने गोद में बैठाया और सर पर शफकत का हाथ फेरा। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस बच्ची को एहसास हुआ आज कुछ अजीब गरीब अंदाज है मामू का। कहती है, मामू क्या मेरे बाबा की खैर है? उस वक्त हुसैन कहते हैं, ऐ बेटी तू यतीमा हर चुकी, बस मौला से इतना कहेंगे, आप जब उस बच्ची पर शफकत का हाथ फेर रहे हैं, देख ले कि सकीना वो न हो, इसलिए कि एक वक्त आएगा वो तमाचे खाएगी, शफकत का हाथ उस पर। ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خداوند اس قلب قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما خداوند شیان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ تکفیری افواج کی تمام صلاحیت کو نیست و نابود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع
1: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the vanes of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.